नहीं जहां करी ना होई बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला प्रभुर रहिया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहिया सो दार राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित बै सर्ब संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वामन हारे केते तेरे राग परिस्यों कहिया है केते तेरे गामन हारे गावन तुदनु पवन पाणी बै संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुदनु चित्त गुपत लिख जानन लिख

सारे गावन तदनु इंद्र इंद्रासन बैठे देवतया अंदर नाले गावन तदनु सिद्ध समाधि अंदर गावन तदनु साध बिचारे गावन तदनु जति सती संतोखी गावन तदनु वीर करारे गावन तदनु पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनु मोहनिया मन मोहन स्वर्ग माच पयाले गावन तुदनु रतन उपाय तेरे अठ सठ तीरथ नाले गावन तुदनु जोध महाबल सूरा गावन तुदनु खाणी चारे गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनु गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनु गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देख कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भाव है सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाहो शाहपत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवड वड्डा डिठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए।

आप हाथ दे ले उबारी सर्व ठावर मोह हो सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई कृपा करी हम बर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सबराता किरविक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शाह करता श्री सुजप पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन बांचत बल पावे सोई दुख नाथ से ब्यापत कोई अड़िल सुने गुम यो या है सुरसना पावई सुने मूर्छित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भव निकटांत नर के रह हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई समत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहसुन तीन कहिजय पाद्रव सुधी अष्टमी रव बारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोपख्याने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापतम सत शुभम सत्यजू दोहरा दा जानकर दास पर की जय कृपा अपार आभादे राख मोहे मान क्रम भजन विचार चौपाई मैना गणेश प्रथम नाऊ किशन बिशन कबू न दयाऊ कान सुने पहचान ना तिन सौ लिबलागी मोरी भग इन सौ महाकार रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाह गए की लाज विचार अपना जान मुझे व्रत भरिया चौन चौन शत्रु मारे मरिया देख तेग जग में दो चल राखा मुहे आवरना दल तुम मम करो सदा व्रत पारा तुम साहेब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा अपे आप गरीब निवाजा दा जान कर कृपा करह मोहे हार परा म्यान द्वार तोहे अपना जान करो व्रत पारा तुम साहेब मैं किंकर थारा दा जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बाहर करो कविता विद नाना किशन जथा मत चरतरो चारो चूक कबले हो सुधारो गबाज दोहरा जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कह हों जग माहे ज्योते प्रभु गो त्याय है अंध स्वर्ग गो जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिबि विचार कश नाहे जल ते उपजत रंग ज्यो जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आयस प्रभु को भयो जन्म धरा जग आया मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कह सुनाए कबे बाज दोहरा ठाट भयो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याय पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान गौ नितुड़ है संत अंत लाहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान दोहरा कालपुर की देह मोह कोटक बिशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव कस राव सस कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस क्रूर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत स्वर्गवास रघुबर घरा सगरी पुरी समेत छा पाई जो ये कथा सुने रगावे दुख भाव ते निकट न आवे मिशन भगत की ये फलोई याद बियाद शब सके न कोई समत सदरह सहस बचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लो ले सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तर सदर्भ तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बात सुबाद विवाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र भेद सबै बहु भेद गहे अनेक ना जान्यो श्री सपान कृपा तुमरी कर मैना कहे हो सब तुहे बखान्यो दोहरा

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम अरदास।

इतनी सेवा प्रदान करने जी कीर्तन करते हैं। पहला दी माफी बख्शनी हम भाई रमेश सिंह जी कैनेडा वाले आप जी ने पित्र बाणी कथा राय जोड़न पासों प्यास का सरण करो जी। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के संपूर्णता दिवस आने वाले ऐतवार आ रहे हैं और पहला प्रकाश दिहाड़ा आने वाले मंगलवार आ रहा है। इस संबंध में सजन गए आप जी ने हाजरी भरनी है जी। हम कथा राय जुड़ना करो।

0: की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी आप संगतां ने शाम दे दवाना विच हारी भर के गुरबाणी कीर्तन कथा दे लाहे प्राप्त किते हन। सतगुरु साहिब जी रहमत कारण सब दी दर हाजरी प्रवान करन, दरो करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शन जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। राम नाम मन लागा, जम लचाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल। पूर्ण पुरख विदाता रहाओ, नानक प्रभ अविनाशी। ताकि सेव न बिरथी जासी, आनंद कर है तेरे दासा। जब पूर्ण होई आसा, बिलावल महला पंचवा। ताती बावन लग गई पार, ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारा राम कार, दुख लगे न पाई। सतगर पूरा भेटिया, जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया, एका लिवलाई रहा। राख लिए तिन रखन हार, सब व्याध मिटाई। कहो नानक कृपा पई, प्रभ पे सहाई। सलोक जह साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत। अणा हो अणा तू, नह छुट्ट है निकट न जाई हो दूत। श्लोक महला पंचवा। मन मह चितवो चितवनी, उद्यम करो उठ नीत। हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के मीत। सोहेला राग गौड़ी दीप की, महला पहला एक ओंकार। सतगर प्रसाद जय कर कीरत आखिय, करते का होए बीचारो। तित कर गाव हो सोहिला, सिवरे हो सिरजनहार। तुम गाव हो मेरे निर्भाव का सोहिला, हो वारी जित सोहिला। सदा सुख होए रहाओ, नित नित जीड़े समालियन। देखेगा देवन हार, तेरे दान कीमत ना पवै। तिसदाते कवन सुमार, संबत साहा लिखिया। मिलकर पाव हो तेल, देहो सज्जन असीसड़िया। जे हो वै साहिब स्यो मेल, घर घर एहो पहुचा। सदले नित पवन, सदन हारा सिमरिया। नानक सेधे आवन, राग आसा महला पहला। छय घर छय गुर, छय उपदेश गुर। गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीर्त होए। सो कर राख वडाई तोए रहाओ, विश्वे चस्या कड़िया पहरा। थित्ती वारी माह होवा, सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के केते वेस, रागत नासरी महला पहला। गगन मैं थाल, रव चंद दीपक बने। तारिका मंडल जनक मोती, तूप मलयान लो। पवन चबरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना, तेरी आरती अनहता। शब्द वाजंत पेरी रहाओ, सहस तब नैन नन नैन। है तोहे काओ सहस मूरत, नना एक तोही। सहस पद बिमल नन, एक पद गंध बिन। सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मह ज्योत, ज्योत है सोए। तिस दै चानन, सब मह चानन होए। गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत इस भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद, लोभित मनो अनदिनो मोहे। आही प्यासा कृपा जल देहे, नानक सारंको होए जाते। तेरा नाय वासा, राग गौड़ी पूर्बी महला चौथा। काम क्रोध नगर भ भरिया, मिल साधु खंडल खंडाहे। पूर्ब लिखत लिखे गुर पाया, मन

तेज अनुसार समात सुनंदा कैसे मार्ग पावे करके ओढ़ दे भावे कहाँ बुझारत बुझे डोरा निष्कैया तो समझे पूरा कहाँ बिजन पद गावे गंग जतन करे तो भी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो भाव स गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तराय संग सहाय सो आवे न चीज जो बह राही तास्यो प्रीत बलवा कह ग्रह पीतर बसे अंध खेल माया रंग रस है दिलकर माने मने प्रतीत काल आवे मूड़े चीत भैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महालोभ द्रोह याहू जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म।

तू करे रे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी, तुम ते हुए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दा सदा कुर्बानी। सलोक देनहार प्रभ छोड़ कै, लागे आन सुवाए, नानक कहू ना सी जाई, बिन नाम है पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पाव है, एक वस्त कान भी खोड़ गवाव है, एक पीना दे दस भी हरले, तो मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर से होना ही चारा, ताको की जय सद नमस्कारा। जाके मन लागा पर मीठा, सर्व सूखता हूँ मन बुठा, जिस जन बना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंध शापनी दे राज, खात पीत बरते अंध उलास, अपनी अमान कश बहुर शाल या ज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रति तापी खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस आगे राख है, प्रभु की आज्ञा मान माथ है, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहेब सदा दया।

अरविंद ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभाव ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का कथे ना जाए अदा खेर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मित गौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न बार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का करता।

आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चह वरना मैं जपे कौ नाम, जो जो जपे तिसकी गत हुए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपांतर उतारे पास प्रेत मुग्ध पात्र को तार, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कित न पाइये धर्म, नानक तिस मिले लिखिया तोर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तस नदरी आया, दाद संदन भाई दिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दुर्गे परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी पराए,

नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसे सुमाटी तैसा मन तैसे बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जुगत नानको पुरख ये जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगरे ठाऊ जित जित कर राखे तैसा दिन नाऊ आपे करण करा मन जो प्रभावे सुन होग पसरे आप अंतरंग लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करहे अनेक जन अंत ना पारा वार नानक रचना प्रभु रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदे कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट भान भ्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तबीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कब का विचारे कई कोट नवत नाम ध्यावे नानक करते का अंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरे कई कोट पर दुख ना करहे कई कोट माया सर्व माहे कई कोट प्रदेश माहे जित जित लाभो तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व उपाय कई कोट पाथर बृख न बजाए कई कोट पवन बाणी बह संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशियर सूर नक्षत्र कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतारे नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्ताम सात कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई कोट किए रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंद कई कोट किए चर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किनर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच सबते नेरा सब हूं ते दूर नानका अल्प त्रया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बहु जूनी फिरे कई कोट बैठ थी खाए कई कोट घाले थक पाहे कई कोट की है तनमंद कई कोट माया मैं चंद जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब कुछ प्रभु के हाथे कई कोट भय भय रागी राम नाम संत लिब लागी कई कोट प्रभु को खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिल्यो प्रभु विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होया अवतार।

जगत इस बलिहार अष्टपदी टूटी गांड नहार गोपाल सर्ब जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माए तस्ते बिरथा कोई ना हेरे मन मेरे सदा हर जाप विनाशी प्रभया पे आप।

वंदना बिना प्रभु विशाता। सोजन सर्व थो का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श पाप मिटावे। अमर सियान सगरी शाठ तिजन की तू सेवा लाग, आमन जान हो भी तेरा, नानक तिजन के पूजो सत पैरा। सलोक सतपुरख जे न जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसका संग सिख उतराय, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिखी करे प्रतपाल, सेवक हो गुर सदा दयाल। सिखी गुर दुरमत मल हरा, गुर बचनी हर नाम चराय। सतगुर सिक्के बंधन काटाय, गुर का सिख बिगाड़ ते हटाय। सतगुर सिखो नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे। सतगुर सिखा हलत पल सवारे, नानक सतगुर सिखो जी नाल संभारे। गुर कै ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आ गया मन में सहाय। आपस को कर

प्रभु सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस पर सा सब जग तराया जन आवन का सुभाव

गावे को विद्या विखम विचार गावे को सार करे तन खेह गावे को जी लै फिर देह गावे को जापै दिसै दूर गावे को वेखै हादरा दूर कथना कथी ना आवे तोट काथ काथ कथी कोटि कोट कोट, कोट

का नाश सुनया सर ब्रह्मा इंद सुनया मुख सुनया मुख साला हनुमंद सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया साहत सिमरत वेद

हर जो तुद पहावै साई परिकार तू सदा सलामत निंकार। असंख मूर खांद कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश

जेश्वरं प्रमृद्धे नमो सहस्रपाणे नमो वस्त्रमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता पेखीय परमीय भोगीय भुगते

अखंड अलिस्य कर्म दृश्य धर्म सर्वा प्रणाडय अंडड भाडय चाचरी शांत व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरियंग करियंग नामे कामे प्रजांग प्रया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती

के सर्वं कलिह के सर्वं दलिह के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र धान्य के सर्वत्र गौण के सर्वत्र पहुन के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश

है, नित्यंत है, सुनिंत है, अदेख है, अलेख है। नित्यंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चर प्रशांत व प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं,

भगवती शांत वे प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमें सल सलाम है समातल कलाम है के सहब दिमाग है के हुसनल चिराग

है, गनी बोल खिराज है, गरीब बोल निवाज है, हरी फुल सिकान है, हिरासल फिकान है, कलंक प्रनास है, सुभाषतोल निवास है, अगंजल गनीम है, हृदय करहीम है, सुभाषतल जुबा है, के साहब किरा है, के नरकंग प्रनास है, बेहतोल निवास है, के सरबल गवान है, बेसल रवान है, तमामल तमीज है, सुभाषतल अजीज है, परम परमीश है, सुभाषतल अधीश है, आदेशल लेख है, हमेशल अपेख है, जिमी नल जुमा है, अमी कुल इमा है, करीमल कुमार है, के जुरुआत जुमाल है,

साध मन मान प्रणाम गुण गान मुदाम अर बर गांज हर नर पर भांज आन गान प्रणाम मन मान सलाम हर नर अखंड वर नर अमांड यन भवनाश मन मान प्रकाश हे गुण गान प्रणाम जल थल मुदाम अण सिंह अंग आसने अपहंग उपमाम पार गत में ते उदार जल थल अमांड देश वैसे अभंड जल थल महंत देश वैस बेअंत अन भव अनास त्रित धर तु रास आजान बाहु एक कै सदाहु ओंकार आद कसनी अनाद खा

संत हर बोल मना शांत वे प्रसाद करनाले है हर काले है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्वे उबारण है धृत के धरन है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड सह खल खंड

कृत है अकृताकृत है धरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नारनायक है खलकायक है विश्वंपर है।

लेख है। सुध सिपाहा दुरंत दुबाहा सो साज स्नाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। तोर अरीन मरोर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिनत आग जहान दान चलेंगे। वीर अपार बड़े वरिया विचार हिसार की धार पछैया तोर तदेश मलेंद मुवासन मातिक जान के मान मलैया। गाड़े गड़ाहन के तोल नहार सुबात नही चकचार लवैया सैब श्री सबको हिर नायक जाज कनेक सुवेक दिवैया। दानव देव फ्रेंदन साचर भूत भविख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाव थपेंगे था।

अनूप स्वरूपा रंग पहो राव कही भूपा डिद दे रज से तजकीनी उत पुज खान बहुर राज दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पहो

सुहावा सब दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन तुरहो लिखिया आया।

बेन बूझे सब खड़ी बंद। आखो सतनाम श्री साहब जी कहिंदे समझ तो बिना जमा दी पुरी विच बन के लै तुरना। तेवे महाराज कहिंदे ने ए प्यारिया गोबर तरन ना जाई धोती टिका तै जप माली धान मलेशा खाई। दोए धोती वस्त्र कपाट धोती भी पहनी है टिक्का भी लाया होया बारला दिखावा किया होया जप माली हाथ विच माला भी पकड़ी हुई है

कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड वैसनहार कूड ही कूड चल रहा है। प्रजा अंधी ज्ञान वेण कूड कुसत मुखो आलाई चेले साज बजाए दे नचन गुरु बहुत बिद भाई काजी होए कै रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई इस्त्री पुरख है दाम हित भावे आवे कि थाऊ जाई ओ वर्त्या पाप सबस जग माई दमड़े ही चाहिए जिथे मर्जी औरत जावे जिथे मर्जी मर्द जावे काजी लोग रिश्वत लेके झूठे कर दे ने सच्चे नु झूठा कर देंदे ने झूठे नु सच्चा कर देंदे ने। साहब जी कहिंदे कूड़ रहा भरपूर मत्थे टिक्का तेड़ धोती का खाई कखाई दर थंदा गेरू रंग दी कखाई दर थंदा कन्नी वाली धोती ओ पहनी हुई है मत्थे ते टिक्का लाया होया है पर हालात की ने अंदर दे हाथ छुरी मन रूपी हाथ विच छुरी पकड़ी हुई है कल काती राजे कसाई जगत कसाई पातशाह जी कहिंदे जगत विच कसाईयां वाले कर्म करिया है। नील बस्तर होवे परवान नीले बस्तर पहन के काजी जड़ा परमानीक हो रहा है। मलेश धान ले पूजे पुराण जिन्ना दी मलेश मई मिलती है उन्हां दा धान लेके ते पूजा पुराणा दी करदा है। अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना कलमा करके पढ़े कटिया होया बकरा जड़ा है कुठा महाराज कहिंदे उह खांदे ने मास तां खाना नहीं चाहिदा जित जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। कबीर साहब जी ने एवें थोड़ी बोल कह दते ने कबीर खूब खाना खीचरी जामे अमृत लोन हेरा रोटी कारण है गला कटावे कौन साडे दंद किहो जे ने। ये मास खाण वाले थोड़ी ने ये प्रशादा छकन वाले ने शेर दे दंद वेखो बघियाड़ दे दंद वेखो वह तिखे होंदे ने बिले दे दंद वेखो वह तिखे होंदे ने मनुख दे दंद चौरे चौरासे चौरे चौड़े होंदे ने ये प्रशादा छकन वाले ने ऐसिया वस्तुआं खाण वाले नहीं है। साहब जी कहिंदे चौके उपर किसे ना जाना ते कहिंदे जी साडा चौका पवित्र हो जाए इत्थे कोई जावे ना जिवें पहला बोल मैं तुहाडे नाल सांझे कर लेने देख चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार कारा लकीरां तां खड़ियां ने पर शरीर विच तां झूठ है जबान ते झूठ है कन्ना विच तां झूठ है शरीर विच कूड़ भरिया होया है ते सोच उत्थे किथे रह जांदी है। मत पिटै वे मत पिटै भई परा हो जाओ परा छूत जाना जे अपवित्रता हो जानी जे मेरे बाप

तेरे पाणे सुरबा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

0: मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े, मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े, प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े, प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े,
1: राज मिल खुशियां
0: कणी त्याय मुख न मोड़े, राज मिल खुशियां।

0: अगन माय होमत परान न्योली कर्म करे बो आसन
1: जय मार्ग संजम अत साधन
0: निमक निमक कर सीर कटावे
1: जावे
0: हर के नाम संसार कछ नाहे
1: नान गुरमुख नाम जत कछ

0: मिथ्या तन तन कुटुंब सभाया,
1: मिथ्या हउमे ममता माया,
0: मिथ्या राज जोबन तन माल,
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
0: मिथ्या रथ हस्ती असव बस्तरा,
1: मिथ्या रंग संग माया के पास्ता,
0: मिथ्या त्रो मोह अभिमान,
1: मिथ्या आपस

0: साध की शोभा ब्रह्माए समानी
1: साध के संग गोचर मिले
0: साध के संग सदा पर भूले
1: साध के संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साध के संग मनोहर बहन
1: साध के संग ना कथू टावे
0: साध संग सत मन पावे
1: साध के संग माया ते पिन
0: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध

0: आगे दुष्ट का संग
1: मानते बिन से सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मलक होवे
0: इस भगवती कीमत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे।